अब श्री धाम वृंदावन में अपनी ब्रज यात्रा को विश्राम देते हुए श्री वृंदावनेश्वरी, श्री राशेश्वरी, श्री हरिदासेश्वरी राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए मस्ती में झूमते हुए उनके नाम का कीर्तन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सने बिहारी लाल की।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 9 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हाई नमस्कार सस्रेकाल गुड मॉर्निंग स्वीट वाला गुड मॉर्निंग आप सब के लिए आ चुका है। गुड मॉर्निंग। और अभी स्टूडियो की घड़ी बता रही है 10:48 हो चुके हैं, तो काफी देर वाला गुड मॉर्निंग है आप सभी के लिए। तो मैंने सोचा सुबह आप सबको गुड मॉर्निंग बोल दूं। और हमारे कुछ स्पेशल से दोस्त अभी इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं और उनका फरमाइश था कि कुछ गाने दिल छू जाने वाले प्ले किए जाए रेडियो गाने पर, तो मैंने प्ले किया है। और बस आप लोग गुड मॉर्निंग के साथ, स्वीट वाले गुड मॉर्निंग के साथ ये प्यारे प्यारे गीत सुनिए। और जो हमारे जिनके लिए स्पेशल ये गीत प्ले हो रहे हैं वो तो दिल लगा कर ही सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, तो मैं प्ले कर दूंगी, कोई बात नहीं। और लेकिन अभी कुछ गाने प्ले हो रहे हैं जो स्पेशली किसी के लिए खास गली है, तो चलिए गाना एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं।

हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना।

नमस्कार, सुस्रेकाल, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आर्जेरिया की तरफ से गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सुबह सुबह मॉर्निंग चाय के साथ क्या चल रहा? टोस्ट, बिस्किट या फिर कोई जूस, कोई नींबू पानी, जो भी है आप लोग सभी यूज करते होंगे। और साथ में जो है कुछ संगीत का भी आनंद लेते होंगे। तो चलिए, हमारे पास मॉर्निंग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सऊदी अरबिया से गुलबाज जी हैं, और हमारे राजेश कुमार जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, और हमारे साथ संतोष प्रजापति जी भी हैं। सभी हैं और एक एक कर जुड़ रहे हैं। तो बस ये तो अचानक से मैं मॉर्निंग में आ जाती हूँ। वैसे कोशिश रहेगी कि मैं 10 के बाद मॉर्निंग में एक घंटा के लिए रोज डेली आऊँ आप सबके लिए स्वीट वाला गुड मॉर्निंग लेने के लिए। तो आप सभी बने रहिएगा कल से हमें, मतलब हाँ, डेली बने रहिएगा, मैं आऊंगी। और जिस दिन नहीं आऊंगी तो उस दिन आप लोग गाना ही सुनिएगा, क्या दिक्कत है। तो अभी कुछ मतलब आधा घंटा एक घंटा से मैं कुछ गाना प्ले कर रही थी, और वो स्पेशली हमारे दोस्तों के लिए था। तो चलिए, अब आपकी फरमाइशें आ चुकी हैं तो मैं आपकी फरमाइशें को ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास राजेश कुमार जी का है, और ये लिखते हैं कि मुझे रिया मैम गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये लिखते हैं कि मुझे एक गाना सुनना है बरसात से। तो जी बिल्कुल, गाना आ चुका है। तो चलिए, गाना मैं आपके लिए प्ले करती हूँ, और इन्होंने सभी दोस्तों के लिए ये गाना प्ले करवा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गाना इनकी तरफ से। इनका गाना है, जी जी बिल्कुल आ चुका है प्लेलिस्ट में। तो चलिए गाना एंजॉय कीजिए, मैं लौट कर आती हूँ तो फिर अगले दोस्तों का भी गाना प्ले कर दूंगी। ओके।

जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ आप सब के बीच फिर से, और आप सब के लिए शीट वाला गुड मॉर्निंग लेकर आई हूँ। तो चलिए कुछ टॉपिक भी लेकर आऊंगी, लेकिन लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा आप सभी को कि मॉर्निंग में मतलब क्या क्या जाता है, ताजे ताजे खबर दूंगी आप सभी को। तो चलिए हमारे पास अगली जो फरमाइश है वो फरमाइश हमारे सऊदिया अरबिया से गुलवाज जी का है, और ये गाना सुनना चाहते हैं, चाहत न होती। तो जी बिल्कुल, आपके गाने आ चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट में, और मैं आपके गाने को अब प्ले करने जा रही हूँ। तो आप अपने गाने एंजॉय कीजिए गुलवाज जी, और फिर से मैं लौटूंगी।

0: जी हाँ दोस्तों, ये प्यारी सी फरमाइश थी हमारे गुलवाज जी की, जो सऊदी अरबिया से जुड़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनका सॉन्ग था और मैंने इनका सॉन्ग प्ले कर दिया और इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया लिखा है। और इससे पहले मैंने राजेश कुमार जी का गाना प्ले किया था, उन्होंने भी लिखा है कि रियत जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो बिल्कुल शुक्रिया आपका भी इतना अच्छा गाना हम सभी को सुनवाने के लिए। और हमारे पास है राकेश शर्मा जी का, और राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि मुझे भी एक गाना सुनना है और गाने के बोल हैं फूल मांगू न बहार मांगू। तो बिल्कुल आपके भी गाने हमारे प्लेलिस्ट में आ चुके हैं, तो चलिए आपके भी गाने को मैं प्ले करती हूँ, आप इंजॉय कीजिए और फिर मैं चलूंगी,
1: नए वीडियोस देखने
0: गाना
1: के लिए
0: इंजॉय कीजिए।
1: हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।

जी हाँ दोस्तों, ये प्यारी सी फरमाइश हमारे राजेश कुमार जी का, राकेश शर्मा जी का था, और राकेश कुमार जी का सॉरी। तो राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें जो है एप्लीकेशन उनको समझ में नहीं आ रहा कि रेडियो गाना कहाँ से सुने। मैंने दिया है बहुत लोगों को VR दिया है, VR का एप्लीकेशन, और VR का एप्लीकेशन देने के बाद कहा है कि वहाँ पे जाइए और इतने नंबर पे आपको मिलेगा। लेकिन लेकिन लेकिन कुछ दोस्त जो हैं बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ते हैं सैयद राशिद नाजी, और उन्हें भी थोड़ा जो है उन्हें परेशानी हो रही है मेरी, मतलब मेरे प्रोग्राम को नहीं सुने कई दिन से। तो चलिए आपको मैं फिर अगर टाइम मिला तो मैं अच्छे से समझाऊंगी। और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त अभी जुड़ी हुई हैं, और चलते हैं। मैं कहाँ मैं चलूंगी, हमारे साथ मंतसा जी जुड़ी हैं पूर्णिया से, और इनको भी एक गाना सुनना है। तो चलिए उनके गाने तक पहुंचती हूँ, और गाना बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए तो गाना सुना दिया मंतसा जी, एंजॉय कीजिए।

0: तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ आप सबके बीच। हेलो गुड मॉर्निंग लेकर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से हमारे शकुर चाचू, और शकुर चाचू भी सुन रहे हैं। मुझे पता, मतलब अभी अभी मुझे लगा कि अभी कल तक वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, और अभी जो है वो हमें ऑडियो भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं रेडियो गाना सुन रहा हूँ, तो मेरा एक गाना भी प्ले कर दीजिएगा, मैं जरूर से। तो पहले मैं आपके ऑडियो को प्ले करती हूँ, सुनिए।
1: सेवा में रिया बेन जी को राजस्थान कोटा रोड मारुति नगर भीलवाड़ा से शकूर मोहम्मद पटवा का नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: बहन जी ये गाना सुनवा देना, फिल्म कांबे चंबल की कसम।
0: जी
1: गाने
0: जी
1: के बोल है, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया शकुर चाचू। और हमारे पास किनका मैसेज है, हमारे पास हया खान का भी मैसेज है, और वो भी गाना सुनना चाहती है। तो चलिए मैं उनके भी गाने को प्ले कर रही हूँ, आप लोग एंजॉय करें। उनका गाना है बहुत ही अच्छा, चलिए गाना एंजॉय करते हैं, और गाने के बाद लौटते हैं तो शकुर चाचू के गाने को लेकर आते हैं।

जी हाँ, दीवानी दीवानी जी, बिल्कुल दीवानी दीवानी गाना बहुत ही खूबसूरत था। और चलिए, हमारे पास बहुत सारे दोस्त इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे सुकूर चाचू के गाने भी आ चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट में और चलते हैं। और हमारे साथ हया जी और ममता जी लिखती हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया जी, बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया आपका भी। और चलते हैं अब हम अपने सकूर चाचू के गाने की तरफ। और सकूर चाचू राखी का कोई गाना लेकर आए हैं, तो चलिए गाना एंजॉय कीजिए। सकूर चाचू मैं प्ले कर दे रही हूँ। ओके।

0: जी हाँ, चंदा रे मेरे भैया से कहना, गाना बहुत ही खूबसूरत था। और हमारे साथ सुकू चाचू अपना कुछ वॉइस भेजे हैं, चलिए सुन लेते हैं।
1: नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजस्थान कोटा रोड मारुति नगर भीलवाड़ा से शकूर मोहम्मद पटवा, और मेरे साथ है सलीम जी सिलावट। और बहन जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा पेश कर रहे हो आप।
0: थैंक यू।
1: हमको बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है, हम खुशी हो रहे हैं, और नीम के पेड़ के नीचे बाहर बैठ कर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: और मेरा गाना आप पल्ले करने के लिए आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
0: जय हिंद, जय भारत आपको भी। और सकू चाचू, आप पेड़ के, नीम के पेड़ के नीचे सुनते ही रहते हैं, मुझे पता है, और अपने दोस्तों के साथ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं जो मैं लाइव नहीं पढ़ सकती, तो चलिए हमारे पास अगला जो डिमांड है वो डिमांड हमारे केशवराज जी का है। और केशवराज जी सुनना चाहते हैं, 1,000ों में मेरी बने फूलों कतारों में, 1,000 में ये गाना है। तो अभी मॉर्निंग मॉर्निंग में गा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैं क्या करूं, मेरी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ है सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग। चलिए तो मैं गाना प्ले करती हूँ और गाना एंजॉय कीजिए। गाने के बाद फिर लौटूंगी तो देखते हैं कि अगले कौन से दोस्त का गाना है, एंजॉय करते हैं। 12 बजे तक मैं प्रोग्राम करूंगी। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी बता रही है 11:44 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं आरजे रिया के साथ। तो चलिए एक गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर लौटते हैं।
2: रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

जी हाँ दोस्तों, 1000ों में मेरी बहना है और अब चलेंगे। मैं आप सभी से विदा भी लूंगी और एक गाने के साथ आप सभी को छोड़कर जा रही हूँ। तो बस ये गाना एंजॉय कीजिए और मैं दोपहरिया में मिलूंगी आप सब से। आज अपना प्रोग्राम लेकर आऊंगी, शब्द मेरे गीत आपके, तो गीत आपके शब्द मेरे आपके, या उल्टा बोलिए शब्द मेरे गीत आपके। तो चलिए अभी ये गाना एंजॉय कीजिए और मुझे अभी इस कार्यक्रम से निकलने की इजाजत दीजिए, यानी स्वीट वाला गुड मॉर्निंग के साथ थी आरजे रिया। और अब चलते हैं अपनी गाने की साथ, आपको जो है छोड़े जाती हूँ और 2 बजे मैं फिर से आप सभी के बीच आऊंगी और शब्द मेरे गीत आपके रहेंगे और आप सभी रहेंगे हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत आनंद आएगा कार्यक्रम में। तो चलिए गाना एंजॉय कीजिए, फिर मैं दोपहरिया में मिलती हूँ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: थे हम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: सिर्फ बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूं।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजेरिया खान दोपहरिया के शो में आ चुकी हूँ आप सबके बीच। तो बस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है कि आज रिया के पिटारा से जो पोटली निकली, उस पोटली में से जो कार्यक्रम निकला, उस कार्यक्रम का नाम है शब्द मेरे गीत आपके। तो बस दोस्तों एंजॉय कीजिए। गाना मैं लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा गाना है। चलिए गाना सुनते हैं। चलिए गाना एंजॉय कीजिए, गाने के बाद फिर मैं लौटती हूँ। ओके।

नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा वेट करना पड़ गया आप सभी को और आप सभी से माफी चाहूंगी। तो दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। तो जी आपने रेडियो गाना ट्यून किया है और आप सभी के साथ आ चुकी है आरजे रिया, आप सबकी प्यारी सी रेडियो दोस्त आरजे रिया। और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त इस वक्त जुड़े हुए हैं। और चलिए, आज आप सभी के लिए एक गेम लाया है और गेम खेलिए, मजा आने वाला है आज के गेम में। और मैं इसी गेम के साथ, लेकिन क्या है ना कि आज नए हैं तो मुझे मतलब आप लोगों से क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा मतलब ये लग रहा, हम देख लेते हैं कि बीच में अगर हम क्वेश्चन एक दो कर दें तो कर दें, लेकिन आगे जो अभी कार्यक्रम अगर मेरा अच्छा खासा रहा तो मैं जरूर से 5 के 5 क्वेश्चंस करूंगी डेली। और उसमें से किसी एक दिन जो है, जो मुझे लगेगा कि आज मैं विनर बनाऊं और इनाम की राशि दूं, तो तभी मैं जो हूं इस चीज को मैं देखूंगी। लेकिन जो है, चलिए आज है हमारे पोर्ट, मतलब एक पिटारा खिलाती हूं और उस पिटारा में से जो पोर्टली निकलती है, उस पोर्टली में से जो कार्यक्रम निकलता है, शब्द मेरे, गीत आपके। तो चलिए मैं एक गाना प्ले करती हूं और उस गाने के बीच से एक शब्द दूंगी आप सभी को। आप सभी जो है हमें उस गाने के जवाब पहुंचाएंगे और जवाब पहुंचाने के बाद जो है मैं आप सभी के, जिनके भी पहले आएंगे, लेकिन अगर अपने नाम से आप गाना प्ले करवा सकते हैं, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 के 10 गाने आप अपने नाम प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए एक गाना मैं प्ले करती हूँ, उस गाने के बीच से आपको एक शब्द दूंगी, तो आप सब तैयार हो जाइएगा। तो चलिए मैं गाने का एक गाना मैं प्ले कर रही हूँ और इस गाने के बीच से मैं एक शब्द दे दूंगी आप सभी को। आप लोग उंगली की स्पीड को जो है बढ़ाइए और बढ़ाने के बाद आरजे रिया के नंबर पर ही भेजना है आप सभी को। और नंबर है, आप सभी को बता ही देते हैं, नंबर आप सबके पास है तो जाहिर सी बात है 7903950271 पे आप सभी को अपने जो है इस गाने के बीच के शब्द देंगे और शब्द से जो है आप लोग अपने गाने भेजेंगे, लेकिन फटाफट भेजेंगे आप, ठीक है? ओके, गाना इंजॉय कीजिए, फिर मैं लौटती हूँ।

दोस्तों मैंने शब्द दे रही हूँ। सबसे पहला शब्द है सजना, सजना साजन, यानी सजना या साजन कुछ भी होनी चाहिए। आप उनसे उन शब्द से हम तक गाना पहुंचाएं। आप हमारा प्यारा सा टेलीफोन नंबर है आपकी प्यारी सी रेडियो दोस्त आर्जेरिया का, जो नंबर है वो है 7903950271 पे आप अपने गाने के बोल हम तक पहुंचाएं और मैं आपके गाने को प्ले करूंगी। और गाने के शब्द है सजना या साजन, तो इंजॉय कीजिए गाना।

0: जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्त और ये हैं निशांत जी, तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। और हमारे राजेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। हमारे संतोष प्रजापति जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। हमारे जावेद अख्तर जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। और हमारे साथ पाकिस्तान से सैयद राशिद ना जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। और हमारे अशोक देशमुख जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। और हमारे सकूर चाचू भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए, हमारे साथ और भी दोस्त जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और चलिए, हमने जो अभी अभी एक शब्द दिया था गाने से, वो था सजना या साजन। तो सबसे तीज जवाब हमारे पास आया है, वो जवाब है हमारे आदरणीय अशोक देशमुख जी का। और गाने के बोल है, सजना के घर जाओगी तुम याद बहुत आओगी। तो चलिए, गाना लेकर आ रही हूँ मैं बिल्कुल। और सजना के घर जाओगी तुम याद बहुत आओगी, तो चलिए गाना एंजॉय कीजिए। गाने के बीच से एक शब्द दूंगी आप सभी से लोगों को, तो आप लोग गाना एंजॉय कीजिए और बीच में ही एक शब्द दूंगी। ओके,
1: और बेल आइकन को प्रेस करें।

तो दोस्तों इस बार का शब्द है याद, याद यादें। तो आप उस शब्द से हमें गाना भेजें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, दस के दस गाने आपके नाम प्ले होने वाले हैं। बस रिया का नंबर नोट कर ले, 7903950271 पे आप सभी को अपने गाने के बोल भेज देने हैं फटाक से और अपने नाम के गाने प्ले करवाने हैं। शब्द है यादें, याद यादें, याद से गाने भेजें।

शब्द दिया था आप सभी को वो थी याद यादें। तो हमारे पास सबसे तेज जवाब आया राजेश कुमार जी का, और राजेश कुमार जी गाने के बोल लिखते हैं, याद तेरी आएगी। सगुर चाचू हैं हमारे, अशोक देशमुख जी हैं हमारे, राशिद नाथ जी हैं हमारे, जावेद अख्तर जी हैं हमारे, संतोष प्रजापति जी हैं हमारे, निशात जी हैं, और सभी के ठीक ठीक हैं, लेकिन सबसे तेज जवाब हमारे पास राजेश कुमार जी का है। तो चलिए राजेश कुमार जी अपने गाने को एंजॉय कीजिए, मैं इसी गाने के बीच से एक शब्द दूंगी आप सभी को।

जी दोस्तों, तो हमने दिया था आप सभी को चांद शब्द, और चांद से हमारे पास बहुत सारे गाने आए हुए हैं। तो हमारे सबसे तेज जवाब में है हमारे सकूर चाचा, और सकूर चाचा जो है मॉर्निंग में भी ये गाना सुने थे। तो चलिए ये गाना मैं बहुत प्ले करूंगी क्योंकि ये दिन है अभी। चंदा रे मेरे भैया से कहना जी, बिल्कुल आपका गाना आ चुका। और उनके बाद अशोक देशमुख जी का है चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम जी, बिल्कुल। उनके बाद हमारे राजेश कुमार जी का भी है जी, बिल्कुल चांद तो हार जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ हैं सैयद राशिद नाथ जी भी, उनका भी सही है। और हमारे जावेद अख्तर जी, हमारे संतोष प्रजापति जी, इन सभी का गाना भी एक से बढ़कर एक है। तो चलिए हम गाना एंजॉय करते हैं सकूर चाचू की फरमाइश पर, वो है चंदा रे मेरे भैया से कहना। बिल्कुल इस गाने के बाद मैं आप सभी के बीच में एक शब्द लेकर आऊंगी।

दोस्तों आपको शब्द देना मैं भूल गई थी, तो चलिए शब्द दे रही हूँ मैं भूल, शब्द दे रही हूँ मैं भूल। भूल से गाने अपने भेजिए हम तक, और हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ पूछ रहे हैं, तो मैं आप सभी को इस वक्त जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो बस आप लोग रेडियो गाना से जुड़े और रेडियो गाना पर मेरा शो सुने, बस उम्मीद है कि चलिए कोई बात नहीं है। तो हमने दिया है आप सभी को भूल, भूल से गाना भेजिए।

0: तो दोस्तों हमारे पास सबसे तेज जवाब आया है, सबसे तेज जवाब हमारे पास पाकिस्तान से आया है। सैयद राशिद नाजी सकूर चाचू हैं और हमारे राजेश कुमार जी हैं, हमारे अशोक देशमुख जी हैं और एक साथी और है, इनका नाम हमें नहीं दिख रहा, ये टीके लिखा हुआ है, तो टीके कौन है हम ये नहीं जानते हैं, आप अपना नाम परिचय दें तो फिर मैं नाम पढ़ूंगी आगे। और हमारे साथ बहुत और हमारे साथ निषाद जी भी पहुंच चुके हैं और ये इनका भी गाना आ चुका है, तो आप सभी के गाने के आगे सबसे तेज गाना आया है हमारे पास सैयद राशिद नाज जी का पाकिस्तान से। तो चलिए उनके गाने को एंजॉय करते हैं, उन गाने के बीच से एक शब्द दूंगी आप सभी को फिर से मैं।
1: सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

तो दोस्तों इस बार का शब्द है बात बात बातें। कुछ भी इनसे गाने भेजिए आरजे रिया के नंबर पे। रिया का नंबर आप सभी को पता है, रिया का प्यारा सा चुटकुल सा नंबर है। नंबर नोट कर लीजिए, एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, 7903950271 पे आप सभी अपने गाने भेज सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 के 10 गाने अपने नाम प्ले करवा सकते हैं। और हमने इस बार दिया है आप सभी को शब्द बातें या बात।

जी हाँ दोस्तों, मैंने जो अभी एक शब्द दिया था आप सभी को, बातें या बातें, तो बस जो है तो हम जो है इसमें क्या कहते हैं कि बातें या बात, तो हमारे पास सबसे तेज गाना आया है वो है हमारे प्रकाश डोने जी, और ये लिखते हैं बातें कभी ना भूलना जी, बिल्कुल आ चुका है और मैं गाना प्ले करूंगी। उनके बाद हमारे सुकुर्स आ चुका है और हमारे जावेद अख्तर जी हैं, हमारे निशात राय भोले जी हैं, निशात राय भोले जी तो का भी है। तो चलिए मैं कहाँ जा रही थी, मैं जा रही थी प्रकाश डोने जी की तरफ, और प्रकाश डोने जी के गाने आ चुके हैं। इन गाने के बाद एक शब्द और दूंगी, आप सब इंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों आप सबको ये बता दें कि सर्वर प्रॉब्लम है और आपके गाने डाउनलोड हो ही नहीं रहे हैं, तो मैं कुछ भी अब नहीं कर सकती। तो क्या बताएं, इनका सर्वर ही ऐसा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कार्यक्रम करने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं यहीं से विदा लेती हूँ। और क्योंकि गाना डाउनलोड हो ही नहीं रहा, तो आप लोग कहाँ के लिए बने रहेंगे, तो मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने, और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, पर अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: फिर ये गाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां, चला जाऊं कैसे, चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन है। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ, इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो, पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां। और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

देखो ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो

0: कुछ याद आया रत्ना?
1: मैं रत्ना
0: रत्ना

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार थीम चॉइस। और आज के थीम के जो शब्द है वो है बाल, जुल्फे, चोटी, चेहरा, मुखड़ा, सूरत और गाल, होंठ, बदन, कमर, हाथ और पैर। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, बालों के नीचे चोटी, या यानी कि अभी मैंने एक यानी कि यहाँ पे जुल्फे पे गाना बजाया था कि चेहरा है या चांद खिला है, और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारा गाना है यानी कि तू लगे चांद का टुकड़ा, भोली से सूरत वगैरह वगैरह बहुत सारे गाने हैं। हर शब्द पे आप गाने भेज सकते हैं अभी लाइव शो में। फिलहाल मेरे पसंद के गाने इंजॉय कीजिए, आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने, और ये गाना अच्छा लगेगा, सुनते हैं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक और बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे कौन से दोस्त है दिखता हूँ आज, यानी कि प्रीति रायदास जी हैं जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मुबारक हुसैन जी हैं, आरजे सोनी जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और उनके बाद हमारे ये हैं, क्या नाम है, आरिफ सिंधी जी हैं, वेलकम करते हैं। ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है ज्योति खटवड़े जी। और हमारे ये विष्णु चंद्र जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। विष्णु चंद्र जी, सुनील कुमार जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और किशन पर साकिया जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। राहुल पासी जी हैं, आपका भी वेलकम है। और कैदल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बबीता जी वेलकम है आपका भी। अगर गाने की रिक्वेस्ट है तो कौन सा गाना है जरा मुझे जरूर इसका लिंक भेज दीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो के गाने को प्ले करने में। और राजेश कुमार जी हैं, वेलकम करते हैं राजेश कुमार जी। और सर्वजीत सेठी जी हैं, वेलकम करते हैं सर्वजीत सेठी जी आपका भी। और यहाँ पे गजानन सलोकार जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी गजानन सलोकार जी। रणवीर सिंह जी हैं जेठालाल, वेलकम करते हैं। राकेश शर्मा जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और ये सुनील चौहान जी हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ अशोक देशमुख जी हैं, वेलकम करते हैं। और अशोक देशमुख जी गाने का बोल जरूर लिख देंगे प्लीज़। एमडी असलम राणा जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। मोहन निवारे जी हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और ओके फिलहाल अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ओके तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किस गाने से, अशोक देशमुख जी के गाने से।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज है स्टार थीम चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है सलामी और गाने का बोल है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: ओके, लेकिन आपके तो ग्रुप डिमांड होती है। आज हमारे सरोज भगत जी का ऑडियो कहीं दिख नहीं रहा है, फिलहाल गाना प्ले कर रहा हूँ। अगर अगर अगर सरोज भगत जी का अलग गाना आएगा तो मैं जरूर प्ले करूंगा। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस गाने को।

बात है। और मुझे तो चेहरा देखने में मजा आता है भाई, क्या कहें, गजब का चेहरा है, बहुत ही चांद जैसा प्यारा सा, मतलब मैंने देखे लाखों मुखड़े और तू लगे चांद का टुकड़ा।

बिल्कुल चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, है कि नहीं? वैसे नाक पे गुस्सा बहुत खतरनाक है, ओ माय गॉड। और यहाँ पे जुड़ चुकी हैं यानी कि सीमा भले जी, तो लिखते हैं कि अमन भैया मैंने भी आज ही आपका रेडियो हॉटस्टार डाउनलोड किया है, मेरे भाई दीपक गायकवाड़ के बोलने पर। मैं सीमा और अच्छा यानी कि सीमा वाले जी इंदौर एमपी से, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका सीमा जी, रेडियो हॉटस्टार में बहुत बहुत वेलकम है आपका। गजानंद जी लिखते हैं कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, अशोक देशमुख जी के पसंद शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। राजेश कुमार जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और नीतू शरण जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि अमन सर जी अच्छा ओके अच्छा किया आपने बुक कर दिया है। तो एम डी असलम राणा लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी भाई की पसंद वंडरफुल शानदार, सुनवाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी पूजा भास्कर जी। और आर्य सिंधु जी लिखते हैं अशोक देशमुख जी की पसंद लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच इतने प्यारे गाने की डिमांड करने के लिए। और अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं इनकी भी सुनी लेते हैं। आवाज नहीं आ रही अशोक देशमुख जी, शायद आपने रिकॉर्डिंग किया है लेकिन कुछ आपने यही कहा होगा कि धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, लेकिन आपकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आई है। एक बार फिर से ऑडियो प्ले करता हूँ, आई होप कुछ आवाज नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ सुनीता गोप जी का, सुनना चाहती है टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो भाई मैं तो तुम्हें देखता हूँ ना, आंखें तेरी जुल्फे तेरा चेहरा तेरा सब कुछ। तो सुनीता गोप जी एंजॉय कीजिए मासूम का ये बहुत ही प्यारा गाना।

0: और चैट बॉक्स में देखूं तो बहुत से दोस्त वहां पे अपना मतलब धमाल मचाए हुए हैं, तो सभी का मैं वेलकम करता हूं चैट बॉक्स में भी। और मैं बता दूं कि बहुत से मेरे पास यहां पे मैसेज आए हुए हैं, जैसे कि यहां पे जुड़ चुके हैं कुंता बेनी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं कुंता बेनी जी। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि यहाँ पे सीमा जी का स्वागत है रेडियो हॉटस्टार में, मैं हूँ इनके सुनील कुमार चौहान इन शिमला हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मोहन हमारे लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि टुकुर टुकुर देखते हो क्या, हाँ ये गाना अच्छा लगा है ना, बिल्कुल मुझे भी अच्छा लगा, ये फीडबैक सुनते हैं।
1: नमस्ते अमन सर जी, अब आवाज आई बताना। और मैं ये कह रही हूँ कि आज का थीम इतना प्यारा प्यारा था ना कि मेरे लगता था कि सारे गाने में गाना भेजूं, लेकिन क्या करूँ, एक गाना भेजना था, भेज दिया। और मैं कल क्या पता मौका ना हो, इसलिए अपने सारे बड़े भाई को और छोटे भाई को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बबीता से कोई गलती हुआ हो तो पूरे साल में तो क्षमा करना, और कल रक्षाबंधन के बड़े भैया को प्रणाम और छोटे भाई को आशीर्वाद प्यार, और खुशी रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, रक्षाबंधन भाई बहन के त्यौहार जिन साल में पूरे एक दिन आता है, तो अपना खूब इंजॉय करें और खुशी रहें। मैं ईश्वर से दुआ करूं कि सारे भाई मेरा सब सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे। और गाने भी सही शुरुआत चल रहा है तो मैं सुन रही हूँ, धन्यवाद
0: देते हैं आपको भी बबीता जी। और मैं बता दूँ कि मैं तो गाना जरूर प्ले करूंगा, और हाँ यानी कि कल होगा रक्षाबंधन स्पेशल शो, यानी रक्षाबंधन वाले गाने तो होंगे होंगे, भाई बहनों वाले भी गाने प्ले होंगे। बस आप लोग कल के यानी कल शाम 6 बजे की तैयारी कर दीजिए अभी से, और अच्छे अच्छे गाने चुन के लाइएगा, और देखते हैं कि कल यानी कितने सॉन्ग विनर बनते हैं, वो तो कल की बात कल होगी। फिलहाल आगे फीडबैक शामिल करते हैं, अनिल कश्यप जी का क्या कहते हैं।
2: गुड इवनिंग अमन भैया, और मैं जुड़ गया हूँ अनिल कश्यप सीमान बिहार से, और टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो टुकुर टुकुर तो हम लोग यही देख रहे हैं कि आप कब आ रहे हैं।
0: अच्छा।
2: और देखते देखते आप आते हैं और मनोरंजन कराते हैं, और इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं, तो बस टुकुर टुकुर देखते हो क्या, बहुत अच्छा सॉन्ग, मस्त सॉन्ग, धन्यवाद।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ नीतू शरण जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी के पसंद शानदार लगी है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। राजेश कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि मजाकास गाना चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है सुन के, और जुड़ गया हूँ कार्यक्रम से जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी के पसंद बेहतरीन लाजवाब लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि आज की महफिल की वो शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है, धमाकेदार गाने चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। सुनीता गोप जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मीना जी यूएस से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी प्रीति रायदास जी का है, सुनना चाहती हैं तू लगे चांद का टुकड़ा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा मेरी सुंदरता के मूल जी के लिए गाना डेडिकेटेड है, क्योंकि वो बिल्कुल यानी चांद का टुकड़ा है मेरे लिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास। फिलहाल ये फीडबैक।
1: अजय अमर सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते दी,
0: नमस्ते।
1: सभी भाई अगवान अपने अपने गाने में शामिल करते, सभी को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। हम भी फरमाइश भेजे हैं
0: जी जी,
1: टाइम मिलेगा
0: चला। अब अगला गाना आप ही का प्ले होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। और निशांत साहब लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है। और सरबजीत सेठी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है। और रणवीर सिंह खेसाला लिखते हैं कि तू लगे चांद का टुकड़ा, बहुत ही प्यारा गाना है। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मैंने देखे लाखों मुखड़े, मेरा गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और मोहन हमारे जी लिखते हैं कि तू लगे चांद का टुकड़ा, गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल। और ओके, और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाह, मुझे ये गाना बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग रिक्वेस्ट के लिए। अच्छा ओके। और कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। गजानन सरकार लिखते हैं कि तू लगे चांद का टुकड़ा, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और ये गाना आपका प्ले हो चुका है, अशोक देशमुख जी ने प्ले करवा दिया है। दूसरा गाना भेज सकते हैं तो मैं जरूर प्ले करूंगा। और यहाँ पे नीतू शरण जी लिखती हैं कि मुखड़ा अच्छा ओके ठीक है। फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे सर्विस भगत जी का है, सुनवाते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है धर्मात्मा, और गाने का बोले चेहरे में वो जादू है। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम से बाद। हम सर्वेश भगत हजरंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, अहमद भगत, स्वरूप भगत, अनंत भगत, सुनील कुमार, मनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मुनत जी, आरजे वंशिका जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे सोनी जी, आरजे रत्ना जी, आरजे एमएस परमार जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी
0: सुना दिया, एंजॉय कीजिए। सर्वेश भगत जी, मैं रेशमा तो नहीं चिल्लाऊंगा, मैं कुछ और चिल्लाऊंगा।

0: बिन वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं और सुभाष तिवारी जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए। अच्छा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम आपका। और निशांत है बोल लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, अच्छा सच में का। और मोहन वाजी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही शानदार लगा, सरेश भगत जी को थैंक यू कहते हैं हम। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि तेरे चेहरे में जादू है, गाना मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छी फरमाइश है। हमारे सर्वेश भगत जी की उनको धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय सर्वेश भगत जी के पसंद धर्मात्मा फिल्म का बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, वालेकुम असलम। और हमारे अनिल कश्यप जी लिखते हैं अमेजिंग सॉन्ग, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और राकेश शर्मा जी क्या कहते हैं सुनकर,
1: सर्वेश भगत जी की पसंद सुपर से भी ऊपर, लाजवाब सॉन्ग अपने गाले में डेडिकेट किए, धन्यवाद।
0: ओके जी। और यहाँ पे बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते मनसा जी और भाई साहब ने गाने में शामिल किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। अच्छा जी। और यहाँ पे कुंदा बिनी जी लिखते हैं कि आदरणीय सर्वेश भगत जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और राजेश कुमार लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी के पसंद एकदम सुपरहिट लगी है, उनको बहुत शुक्रिया। और मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ क्या बात है, मेरा दिल छू गया इस गाने को सुनकर, बहुत शानदार लगा इस गाने को। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी धन्यवाद, गीत में शामिल किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक तिवारी जी लिखते हैं कि हम भी उड़ गए, अच्छा सच में का, नहीं दिखाई दे रहे आप मुझे, नहीं नहीं वेलकम है आपका जी। ज्योति खटवाड़ी जी लिखते हैं कि अमन जी आप वो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। ओके जी। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और आरिफ सिंधी जी क्या कहते हैं, जरा इनकी भी सुनी लेते हैं। आरिफ सिंधी जी खुल जा सिंह भाई।
2: सर्वेश भगत जी आप बहुत ही प्यारी डिमांड लेकर आए हो आरजे अमन जी के शो में और हमको सुनवाया, आपका शुक्रिया। और अमन जी,
0: जी, जी
2: आपने हमें प्ले करके सुनवाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से,
0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अच्छा ओके, आपने कहा सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाया, थैंक यू सर। मैं पहले ही ऑफ कर दिया। नीतू शरण जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना है, झूमने पर मजबूर कर दिया। हाँ अभी तो सुनते रहिए, अभी मजा आने वाला है बहुत सारे। काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और एमडी असलम राणा जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी की पसंद उम्दा फर्स्ट क्लास सुनवाने के लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया। और अमन भाईजान आप वही तो ज्योति खटवड़ी जी हमसे कह रही थी। ओके जी, हाँ ओके। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी मैंने अपनी बहन को भी आपके प्रोग्राम और रेडियो हॉटस्टार के इन परिवार का सदस्य बना दिया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका मैसेज आया था मेरे पास। और लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार पर इस रक्षाबंधन पर ज़्यादा से ज़्यादा भाई और बहन आपका प्रोग्राम से जुड़े और अधिक से अधिक रेडियो हॉटस्टार के कार्यक्रम को सुने, यही मैं कामना करता हूँ, धन्यवाद देते हैं दिल से आपका। आत्माराम पंडित जी लिखते हैं कि अच्छा चलिए आपका भी गाना मैं प्ले करूंगा, टेंशन मत लीजिए आत्माराम जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, सर्वेश भगत जी की डिमांड ऑसम लगी है। आर के रवि जी जुड़ चुके हैं, आर के मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ रवि किरण जी। ओके, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। फिलहाल अगला जो डिमांड है ज्योति खटवटे जी का है और ये भी सच में बहुत ही प्यारा गाना है, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं क्या हम करें।
3: तेरे चेहरे से नजर हटती।
0: और अगला गाना आत्माराम पाटिल जी आपका, तेरे चेहरे

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। और यहाँ पे क्या नाम है हमारे प्रमोद कुमार लिखते हैं, ज्योति खरवाड़ी जी की डिमांड लाजवाब लगी है, बेहतरीन लगी है। और सरोज भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, ज्योति घटवटे जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं, हमारा गाना फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू।
0: वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम। और रणवीर सिंह जेठला लिखते हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, हम क्या करें। और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि ये ज्योति जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, ओके जी। और कुंता विनोद लिखते हैं कि वाह, बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए ज्योति जी को थैंक यू कहते हैं। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, क्या हम करें, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या गाना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये गाना। और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, ओके जी। और राकेश शर्मा जी लिखते हैं ज्योति जी की पसंद सुपर से भी ऊपर लगी है। और आत्माराम जी लिखते हैं कि जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी, मैं अगला गाना आप ही का प्ले करने वाला हूँ। और आपके गाने में शामिल हो रही हैं नीतू शरण जी, तो दोनों का गाना मैं एक ही साथ मैं प्ले कर रहा हूँ। और ये गाना

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और अरुण मन्ना जी लिखते हैं कि ज्योति जी के गाना मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और आर के रवि जी लिखते हैं कि यानी कि चेहरे से नजर नहीं हटती, हम क्या करें, आप ही को देखते रहे आप, या मतलब आप ही से प्यार करें। अच्छा ओके क्या बात है। और यहाँ पे ज्योति जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना सुनवा दिया। और अच्छा ओ माय गॉड, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आपको श्रेया घोषाल में की आवाज में चाहिए था, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं है, अगर कोई और गाना की डिमांड कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, या कहिएगा तो मैं दोबारा उसको उस गाने को यानी श्रेया घोषाल की आवाज में प्ले कर दूंगा। जो भी होगा प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए प्लीज। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
1: अरजय अमन सर जी, नीतू शरण जी और आत्माराम पाटिल जी, दोनों भाई और बहन का गाना हमें शामिल किए, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका। और अनिल मेहता जी थे, वाह बहुत लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए और नमस्ते करते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड सुपर हिट लगी है। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, ये गाना भी मुझे अच्छा लगा है। आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मोहन निवारी जी लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत ही शानदार है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। कैजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीतू जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, ये कभी कभी गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोनों दोस्तों को। साथ ही साथ एम ताहिर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: आरजे मरखान जी,
0: यस सर जी,
2: आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
2: अमन खान जी, आपकी मखमली आवाज में वो जादू है जो हर किसी को अपना दीवाना बना देता
0: है। ओह माय गॉड,
2: जिस बेमिसाल अंदाज और संजीदगी से आप इस कार्यक्रम को पेश करते हैं वो काबिले तारीफ है।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच।
2: और आपकी संजीदगी की वजह से आप दिलों में जो एहसास पिरोते हैं वे सचमुच काबिले तारीफ है। आप जब भी बोलते हैं वो सीधे अल्फाज आपके दिल में उतरने वाले होते हैं।
0: थैंक यू सो मच।
2: मेरी फरमाइश है एक गाना भीगे होंठ तेरे, अगर आप इस प्रोग्राम में वो सुना दे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये गीत मैं अपने लिए और जितने भी सुनने वाले लाइव हैं उनके लिए और अपने कुछ दोस्तों के लिए जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। सबसे पहले सोनू गौतम जी है, सुनील कुमार जी है बाके बिहार वाले, गौरव ठाकुर जी है, परवेज अहमद जी है, प्रिंस पासवान जी है, सतीश शर्मा चंडीगढ़ वाले हैं और बस आप तो हो ही इसमें शामिल।
0: थैंक यू सो मच
2: इसके लिए, और इससे ज्यादा कहना जो कुछ भी कहना है वो आपको ही कहना है इस शो में।
0: एक्चुअली
2: आपके अल्फाज अच्छे लगते हैं।
0: मैं अगला गाना
2: ताहिर बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश,
0: धन्यवाद। एक्चुअली अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला था वो इन पूजा भास्कर जी का प्ले करने वाला था सिस्टमेटिक ढंग से, लेकिन बीच में अब रिकॉर्ड के लिए खेद है, अगला गाना आप ही का मैं प्ले कर रहा हूँ। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: सच में गाना, ये अब क्या कर, यहाँ से इन्होंने प्रोग्राम को मोड़ दिया, मैं कहीं और ले जा रहा था, अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। फिर फिलहाल आएंगे लौट कर वापस वहीं पे, फिलहाल अभी अब कहीं और बढ़ चुके हैं। और कुंता जी लिखते हैं कि ये तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे कपूर जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, उधर भेज दीजिए, कोशिश करूंगा आपके गाने को प्ले करने के लिए। राकेश शर्मा लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और अनिल मेहता जी क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं ऑडियो, नेटवर्क डिस्टर्ब करता है।
1: सभी गाने बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, एक से एक बढ़कर गाने चल रहे हैं। आरजे अमन सर जी आपके लाइव शो में अनिल मेहता सूरत गुजरात से जुड़ गए हैं, थैंक यू।
0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी अनिल मेहता जी, और यानी कि प्रीतम कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाई यानी प्रीतम जी, रेडियो हॉट स्टार आपका स्वागत करता है। और मोहन नेवाल जी लिखते हैं कि भीगे होठ तेरे वाला गाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि भीगे होठ तेरे गाना भी काफ़ी अच्छा है। और ज्योति खटवाल जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, थैंक यू सो मच, ओके। और फिर बैक सुनते हैं।
2: अमन भैया नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे एम ताहिर जी का, उन्होंने हमें अपने गाने में शामिल किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत ही अच्छा सॉन्ग लेके आए हैं वो, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
0: धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा बिल्कुल, अब मुझे भी इमरान हाशमी याद आ रहे हैं यार, क्या करूँ, इसलिए तो अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी मन कर रहा है अब। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मस्त गाना चलाने के लिए। और मीना जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही लाजवाब है। तो भाई आरिफ सिंधे जी इंजॉय कीजिए अपने प्यारे से गाने के, जो मुझे बेहद पसंद है सच में, चुमलू होठ तेरे दिल की यही ख्वाहिश है।

0: दिल की यही ख्वाहिश है और सच में दिल की यही ख्वाहिश है। वैसे फिर देखिए मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं और कल मैंने एक गाना सुना था चुम्मे में चमन परा, सच में बहुत ही मजा आया था उस गाने को सुनकर। और ये निकाश वो चमन पास हमें भी सुबह शाम मिलता कितना मजा आता ना। गोविंदा खंडादेव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और असलम राणा जी लिखते हैं कि मेरे गुमान से ये गीत तो भींगे होठ तेरे फरमाइश में जी ओके। और ये फिर
1: आरजे अमासा जी, अरिफ सिंधे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आरिफ सिंधे जी की डिमांड औसम लगी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अरे सिंधु जी लिखते हैं बहुत शुक्रिया अमन सर जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन सर जी भीगे होड़ तेरे ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ताहिर जी को। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि चुम लो होड़ तेरे वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा है। और राकेश शर्मा लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि ये चुम लो होड़ तेरे वाला गाना बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मस्त मस्त गाना चलाने के लिए। अरे आप सबका धन्यवाद मस्त मस्त गाना भेजने के लिए। हमारे ये गजानंद जी लिखते हैं कि आरिफ सिंधु जी के पसंद बहुत ही अच्छे लगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यहाँ पे सुनील चौहान जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर गाना है अमन जी, जी जी बिल्कुल। और नंदलाल जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह क्या फरमाइश है जी, बिल्कुल। निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, अच्छा। और किशन पासी अक्कर जी लिखते हैं कार्यक्रम शानदार चल रहा है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके जी। तो अगला जो डिमांड है वो मैं सुनवा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ किनका, लाल लाल होठों पे, समझ रहे ना, मतलब लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है, तो मैं सुनाऊंगा इसको। ओके हाँ मिल गया, लाल लाल होठ पे, लेकिन माय गॉड कोई बात नहीं, यहां से डाउनलोड करते हैं।

0: वेलकम है कौन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं और राहुल पासे जी लिखते कि अमन सर जी अच्छा ओके कोशिश करेंगे प्रॉमिस नहीं करेंगे फीडबैक सबमिट करते हैं।
1: आरजे अमर सर जी कैनाथ जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी वेलकम। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये कैनाथ जी की डिमांड शानदार लगी है और राकेश शर्मा लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग सुपर से भी ऊपर वाला गाना सुनने को मिला है और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है बहुत ही प्यारा गाना है और गजानंद जी लिखते हैं कि लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है नजायज का बहुत ही शानदार गाना थैंक यू कैनाथ जी। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना था अच्छा सच में अब समझ में आया आपको। और यहाँ पे काजल झकाज लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना है अच्छा ओके। रंजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम है आपका भी और लिखते हैं हम भी जुड़ गए जी बहुत वेलकम करते हैं। और कुंता भी लिखते हैं कि आरिफ सिंधी जी और कैनाथ जी दोनों की डिमांड मुझे बहुत ही प्यारी लगी है बहुत खुश हुआ था थैंक यू दोनों को। मीना जी लिखते हैं वाह ये हुई ना बात ये हुआ ना गाना। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये कैनाथ जी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और असलम राना लिखते हैं कि नाजायज मूवी का सॉन्ग मुझे भी पसंद है और सुनवाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इसके बाद मतलब जो डिमांड है अच्छा अरविंद कुमार जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं लिखते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया गाना अमन सर जी सुनने को मिल रहा है और थैंक यू कैनाथ जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है बबीता जी का ही सुन लेते हैं फिलहाल क्या सुनवा रही हैं हम लोग।
2: नमस्ते अमन सर जी मैं ये गाना भेज रही हूँ फोटो पे तो गाने बोल रहे हैं होठों पे तेरा नाम है बस जाना मेरा काम है कहती हूँ सुबह शाम जाना आई लव यू टू मी ये गाना है। इस गाने में आपको और बिटिया रानी को और के सारे दीवाने दीवानी सबको शामिल करते सुनवा देना धन्यवाद
0: सुनवा दे,

0: वेलकम है कौन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और फीडबैक मेरे पास राहुल पासे जी लिखते हैं कि लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और सर्वेश भगत जी,
1: आरजे अमन सर जी, बबीता बहन जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: और यहाँ पे निशांत लिखते हैं नाइस सॉन्ग जी। फिर ये राजेश कुमार लिखते हैं कि बबीता जी की डिमांड मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बबीता जी की पसंद मुझे बहुत ही लाजवाब लगी है। साथ ही साथ रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि होठों पे बस तेरा नाम है गाना बहुत ही प्यारा है। और काजल झका जी लिखते हैं ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फीडबैक क्या कहते हैं एम ताहिर जी।
2: आरजे अमन खान, आपने मेरी फरमाइश पर भीगे होठ तेरे जिससे अंगेज अंदाज और सुरीली आवाज में साथ खुद गाकर पेश किया, उसने रूह को मशरूर कर दिया।
0: ओह माय गॉड,
2: आपकी इस नायाब गायकी और अताया खास के लिए तहे दिल से बेहद ममनून वे ममनून एहसान है।
0: ओह माय गॉड,
2: एम ताहिर बढ़ापुर बिजनौर।
0: भाई आपकी आपकी जो ये मतलब यानी उर्दू है ना बहुत ही प्यारा है, मतलब जो आपके उर्दू के अल्फाज हैं ओ माय गॉड सीधे दिल को छू जाते हैं, मतलब इतनी तारीफ ओ माय गॉड लगता है कि नेक्स्ट लेवल की तारीफ कर रहे हैं आप। और कुंता भी ने लिखते हैं कि थैंक यू सो मच बबीता जी, आपका गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मैं तेरे प्यार में पागल हूँ ये वाला गाना अच्छा लगा है। रंजीत कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है। और अरविंद कुमार लिखते हैं कि ना बाबा ये आज की थीम पर नहीं है, अगला जो डिमांड है जाकिर खान जी का है, सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल तेरे होठों की हंसी है सनम मेरी जिंदगी। फिलहाल शामिल करते हैं
1: एम ताहिर बड़ापुर बिजनौर। सर अमान जी, हकीकत को आईना दिखाया, कोई तारीफ ज्यादा नहीं करी, जो सच है वो सच कहा।
0: थैंक यू सो मच। लेकिन आपके उर्दू के जो अल्फाज हैं, माय गॉड, बहुत प्यारे हैं। ये फिर दे
2: आरजे अमान सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू
0: वेलकम जी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि होठों पे युवा लगाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। साथ ही साथ सुनील कुमार जी क्या कहते हैं?
3: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से। और अभी जो आपके तारीफ में एम ताहिर जी ने जो शब्द बोले हैं, आप तो अमन भैया हिंदी के टीचर हैं हमको लग रहा है, लेकिन ये तो उर्दू के टीचर हैं, तो इसलिए इनकी जो है उर्दू बिल्कुल पुख्ता रूप से बिल्कुल मजबूत है। तो एम ताहिर जी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए, धन्यवाद
0: जी। बिल्कुल, तो मैं बता दूं कि मैं भी उर्दू का ही टीचर हूँ ना, इसीलिए तो मैंने कहा मैं उनको पहचानता हूँ ना, वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा उनकी जो उर्दू के जो अल्फाज हैं ना, बहुत ही प्यारे हैं। रवि मोहरे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और रणवीर सिंह जढ़ला लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और निशांत राय बोहे लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है जी, बिल्कुल। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये दोस्त जागर जी की डिमांड औसम लगी। इसी बात पर जरा हम गोरे गोरे मुखड़े पे कला कला चश्मा पहनवा के आते हैं। ओके, फिलहाल आप लोग इंजॉय कीजिए इस गाने को। और लेकिन आज तो जो गाने हैं, मतलब क्या बताएं, सभी एक से बढ़कर एक हैं। एंजॉय द ट्रेन। और ये है यानी कि भौजी ऑफ इट्स कुमार जी। अब भौजी इट्स कुमार की कौन जी है जी, मुझे नहीं पता। फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मस्त गाना लगा मनसा जी, मजा ही आ गया सुन के। और किशन पाल लिखते हैं कि शानदार गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जागीर खान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, बहुत ही प्यारा गाना है। एम ताहिर सर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: मैं एम ताहिर कुरैशी, सुनील कुमार जी, बाकी बिहार वालों को और जी आर जी अमन जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने जो मेरी अल्फाज आप दोनों को पसंद आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजारी मेरी जानिब से।
0: ओके।
1: लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा टूटी फूटी बोली,
0: नहीं
1: आपको बेहतर लगी, बस क्या कहूँ इससे ज़्यादा, बहुत बहुत थैंक्स।
0: नहीं जी, आपने जो भी बोला बहुत ही अच्छा बोला है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और फिलहाल यहाँ पे जुड़ चुके हैं देवराज जी, तोमर जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं देवराज तोमर जी। और काजल झका जी लिखते हैं यानी कि काला काला चश्मा वाला गाना मुझे प्यारा लग रहा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं वाह लाजवाब चॉइस है। और मीना जी लिखते हैं वाह ये मुझे गाना बहुत ही शानदार लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। निशांत राय बोल लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना चल रहा है। ओके जी। अजय कुछ जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं अजय कुछ जी। राहुल पासे जी लिखते हैं कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा बहुत ही अच्छा लगा है। और अरविंद कुमार लिखते हैं कि गोरे गोरे मुखड़े पे ये वाला गाना मुझे सुनकर मजा ही आ गया। अगला जो डिमांड है अनिल कश्यप पे जी का है। ओके, तो बाहर आने तक का गाना सुनना चाहते हैं, ये काली तेरी चोटी है पर आना तेरा लालमी। इंजॉय कीजिए इस गाने को। इसके बाद यानी कि प्रांडे विच दिल अटका वाला गाना तो जरूर प्ले होगा।

0: और मैं अभी अभी यानी देख रहा हूँ इसी गाने की डिमांड हमारे यानी राधे जी ने भी किया है। ओ माय गॉड सॉरी, नाम लेना भूल गया था राधे जी। अभी देख रहा हूँ मैं सॉन्ग रिक्वेस्ट में, और इसके बाद अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ बहुत ही प्यारा है, और जिसे और ये गाना शायद मेरे ख्याल से यानी सुनील कुमार जी का था शायद, जब देखना पड़ेगा मुझे, और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं। और हाँ बिल्कुल, यानी कि सुनील कुमार जी का ही डिमांड है। थैंक यू सो मच। और देवराज जी लिखते हैं कि ये आज का थीम क्या है, आज का थीम के जो शब्द है वो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, और मैं बता दूँ क्या क्या थीम है। आज के जो थीम के शब्द है वो है बाल, जुल्फे, चोटी, चेहरा, मुखड़ा, सूरत, गाल, होठ, बदन, कमर, हाथ और पैर। ओके जी, फिलहाल मेरे पास फीडबैक और सब है। यहाँ पे रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि गाना मुझे अच्छा लगा है, और दत्तक करम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दत्तक करम जी आपका भी। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं,
1: आरजे अमर शाह जी अनिल का सब्जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू
0: जी आपका। और काजल झका जी गाना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और कुंता मैंने लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है, थैंक यू सो मच जी। मैं अभी देखा हूँ कि इस गाने में डिमांड हमारे यानी राधे जी का भी था, आई एम सॉरी राधा जी आपके नाम मैंने नहीं लिया था। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालिमनी। बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन जी और सभी दोस्तों का धन्यवाद देते हूँ गाने को पसंद करके फीडबैक देने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालिनी वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद है। सुनील कुमार लिखते हैं कि काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालिनी ये वाला गाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद इस गाने के लिए भी। कृष्ण पाल जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और देवराज तोमर जी लिखते हैं कि ओके अमर सर जी थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक एम ताहिर जी का।
2: डियर अमन खान जी,
0: यस सर जी,
2: आपकी दिलकश आवाज और बेहतरीन अंदाज ने और दोस्तों के नगमों ने ढलती शाम को एक जादू रूप फूंक दी है।
0: अच्छा जी,
2: हॉट स्टार के इस शो में सुरों का सिलसिला ऐसा सजा है कि जिसकी जितनी भी अल्फाजों में तारीफ की जाए वो इतनी ही कम है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
2: हर एक तरन्नुम दिल को सुकून से भर देता है और पूरा माहौल खुशनुमा बना दिया है। एम ताहिर बढ़ापुर बिजनौर।
0: थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड सुनिए अपने दोस्त सुनील कुमार बांका बिहार से।
3: अमन भैया गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आज की थीम चॉइस में मेरी फरमाइश रहेगी, एल्बम का नाम है पगला कहीं का, और गाने के बोल हैं बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के पीछे है परांदा, परांदे बीच दिल अटका। इस गाने को पहले तो आपको समर्पित रहेगा, और उसके बाद आपकी सुंदरता की मूर्त को, वंशिका जी को, आकांक्षा जी को, आजय परमार जी को, सोनू गौतम, प्रिंस पासवान जी हैं, मुक्तिनाथ जी हैं, परवेज अहमद जी हैं, और नेकलस जी हैं, अरुण मंडल जी हैं, और एम ताहिर जी हैं, और जेठालाल जी हैं, इनके साथ साथ रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा गाना डेडिकेट रहेगा, धन्यवाद।
0: ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को। और मेरा भी दिल परांदे बीच अटक गया है।

0: बिल्कुल परांदे वीजे डी लड़का, क्यों मजा आया ना गाना सुनकर। और ये जफर रंगदे जी राजस्थान से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा है। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, सुनील कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: और निशांत भाई लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, ओके जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुनील जी की पसंद बहुत ही बेहतरीन लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एम ताहिर जी क्या कहते हैं सर जी, सुनते हैं।
2: अरे सुनील भाई जी क्या बात है, क्या गाना चूज किया आपने, तारीफ करनी पड़ेगी आपकी पसंद की। पसंद आपकी है भाभी जी की पसंद या भाभी के लिए आपके ये अल्फाज है?
0: बिल्कुल जो भी कहिए,
2: नाइस सॉन्ग। एम ताहिर बढ़ापुर बिजनौर,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी और इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। साथ ही साथ हमारे ये काजल झका जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, ओके जी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये भी गाना सुपर हिट लगा है, मस्त लगा है, ओके। अरे सिंधी जी लिखते हैं अमन सर जी आज तो एक से बढ़कर एक गाने की डिमांड आई है और सुनने को मिल रहे हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे गाने की डिमांड करने के लिए, ओके जी। और हमारे असलम राणा जी लिखते हैं कि अमन भाई आपने अपने ओके ओके ओके अच्छा जी हाँ, ये भी नहीं बताया कि थीम इन्हें किसने दिया है, तो मैं बता दूं कि थीम ना ही आपने दिया है और ना ही हमारे अशोक देशमुख जी ने दिया है, ये थीम मैंने खुद से यानी रखा है और अगले हफ्ते के मैंने थीम रखा है यानी कि श्रृंगार पर, जैसे कि इन बिंदिया, इन चूड़ी यानी मतलब इन लाली, इन झुमका, इन पायल, इन चूड़ी, इन कंगन, ये सब मैंने जितने भी यानी कि श्रृंगार वाले जो इन चीज़ें होंगी वो अगले हफ्ते की थीम रहेंगी, ओके। तो उसके बाद अगर कोई मुझे बताएगा तो मैं उनकी थीम को रखूँगा, मतलब अगले हफ्ते के बाद। तो अभी कुछ ना अच्छा सा थीम बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मस्त गाना लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और सुनील कुमार क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
3: अमर भैया नमस्कार, मेरी पसंद का गाना चलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से,
0: ओके जी। और यानी प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि ये प्रांदे बीच दिल अटका सॉन्ग सुनकर तो मजा ही आ गया, अच्छा सच में का ओके, मैं तो यहाँ डांस करने लगा था, सच में इतना प्यारा गाना था कि। और यहाँ पे कुंता मैंने लिखते हैं कि इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए सुनील जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार का मंच ही ऐसा है कि हम क्या बताएं, नंबर वन शो चल रहा है एकदम। और यहाँ पे कृष्ण पाल जी लिखते हैं कि चोटी वाला गाना मुझे अच्छा लगा। इसके बाद अगला जो डिमांड है वो आरजे सोनी जी का है और आरजे सोनी जी आज सुनना चाहती हैं भोजपुरी गाना, सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। और इसके बाद इनका जो ये विनर वाला जो गाना है उसको उसपे प्ले करने के बाद फिर मैं प्ले करने वाला हूँ मतलब इनका फीडबैक।
1: पापा मम्मी

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और ये सुनते हैं सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
0: जी। वेलकम है आपका भी। ओके, और काजल झका जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा। आरजे सोनी जी थैंक यू सो मच। रणवीर सिंह जेठला लिखते हैं कि ये गीत मुझे अच्छा लग रहा है। और यानी प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि आज यानी कि सोनी मैडम तो यानी कि छुप छुप कर सुन रही हैं। हाँ नहीं, वो छुप छुप कर नहीं सुन रहे, वो तो यानी कि चैट में पूरा धमाल मचाई हुई है, यानी कि लाइव चैट में। ओके, और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: ताहिर भैया, आपको पता ये है, आपने मेरी मन की बात बता दिया और ऑन एयर कर दिया, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है।
0: अच्छा।
2: और फीडबैक देने के लिए आप जैसा भी समझे, आपकी समझ बहुत अच्छी है मैं जानता हूँ। धन्यवाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो छुपे रुस्तम है ना, इसीलिए। और कुंता बहन लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है आरजे सोनी जी आपका, थैंक यू सो मच। और असलम राणा जी लिखते हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अगला गाना आप ही का प्ले होने वाला है, लेकिन आरजे सोनी जी का गीत उनका अच्छा लगा। ओके, भोजपुरी कोई बात नहीं, देखिए कभी कभी भोजपुरी भी गाने बहुत अच्छे होते हैं। आर्य सिंधी जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का डिमांड बहुत ही लाजवाब लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की डिमांड बहुत ही लाजवाब है। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि बड़ा कातिल बा फिगर वाला गाना सुन के मजा आ गया सुन के एकदम। और यहाँ पे देवपाल मौर्य जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई। और नव्या जी गोंडा से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नव्या जी। फिलहाल अगला जो डिमांड है असलम राणा जी का मैं प्ले करने वाला हूँ, ये गोरे गोरे गर्ल किसके लिए है बताओ ना।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। सबसे पहले गजानंद लिखते हैं कि सुनील जी आर के रवि जी के पसंद तो नहीं प्ले हो रही है, ये तो किसी और की प्ले हो रही है। फिलहाल सर्वेज भैया जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, एमडी असलम राणा जी, अपने भाई साहब जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी। और काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है असलम राणा जी का। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है। और यहाँ पे निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर असलम राणा जी की डिमांड छक्का। ओके जी। और मीना जी लिखते हैं वाओ आई लव दिस सॉन्ग। ओके जी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गोरेगाल किसके लिए है। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गोरेगाल किसके लिए गाना बहुत अच्छा लग रहा है। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आमना खान जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और दत्ता जी लिखते हैं कि असलम राणा जी आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल यहाँ लिखते हैं आमना खान जी लिखते हैं कि असलम राणा जी आपका गाना बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है, अच्छा असलम राणा लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है वह हमारे इन प्रमुख जी का है, वो भी भोजपुरिया टमाटर लेके आए हुए हैं। सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।
2: अगर आप भी चाहते हैं

0: बिल्कुल तेरा चेहरा कमाल है, टमाटर जैसे गाल लाल लाल है एकदम। फीडबैक सुनते हैं।
1: अरजे अमन सर जी, प्रमुख जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि भाई प्रमोद जी की डिमांड शानदार लगी है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय असम राणा जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, शुक्रिया। दत्ता जी लिखते हैं कि भाई प्रमुख जी आपका गाना मुझे बहुत ही पसंद लगी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये ही गाना मुझे अच्छा लग रहा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, अगला जो डिमांड है वो यानी कि काजल झक्का जी का। और काजल झक्का जी इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। और फीडबैक निशा भाई बोले लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया ये गाना चल रहा है, मुझे मजा आ रहा है सुन के। और ये फीडबैक सुनते हैं
1: आरजे अमन सर जी, काजल झा जी, छोटी बहन अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं,
0: वेलकम की। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये काली जुल्फे गोरे गाल, उस पर ये मस्तानी चाल गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और मीना जी लिखते हैं वाव ऑसम चॉइस के लिए, थैंक यू सो मच, दिल खुश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काजल झक्का जी, बाबूलाल जी लिखते हैं अमन जी ये काजल झक्का जी के डिमांड के साथ हम भी जुड़ गए, हाँ वेलकम करते हैं आपका भी। रणवीर सिंह जी जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे अच्छा लगा, और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: अमन भैया जी, मैं घर पे पहुंच गया हूं और रास्ते में सुनते सुनते आया हूं, तो सारे लोग जो भी हमारे गाने पे फीडबैक दिए, काली तेरी टोपी है इस गाने के लिए, तो उन सबको धन्यवाद। और साथ ही आपकी रेडियो जॉकी रेडियो की मतलब जितनी तारीफ की जाए भोजपुरी में कम है।
0: अच्छा।
2: वो आरजे सोनी, उनका भी गाना बहुत ही मस्त लगा
0: जी,
2: और पता नहीं कहाँ से वो गाना लाती हैं, उनको पूछना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनका गाना, धन्यवाद।
0: पूछिए पूछिए पूछ के बताइए हमको भी, ओके। और लेकिन जब भी आती हैं शानदार डिमांड के साथ आती हैं। और गजन सरकार जी लिखते हैं कि ये काली जुल्फे गोरे गाल, उस पर ये मस्तानी चाल, मैं भी कहूँगा काली जुल्फे गोरे गाल, उस पर ये मस्तानी चाल, मजा आ गया ना। अमना खान जी लिखते हैं कि सुपर आवाज एंड दिल जीतने वाला साज, और क्यों नहीं मिला हमें रेडियो हॉटस्टार ये पिछले साल, अच्छा ये करीब यानी कि 3 साल से है, और ये यानी कि 4th साल चल रहा है रेडियो हॉटस्टार का, आप सबकी दुआओं के साथ। फिलहाल सरबजीत सेठी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है, धन्यवाद देते हैं आपको। और किशन पाल जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग चल रहा है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ओ वाह लाजवाब चॉइस है। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि काली जुल्फे गोरे गाल, ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ओके, और फिलहाल अगला जो डिमांड है वो गोविंदा खंडादे जी का है, ये गोविंदा खंडादे जी हटकर गाना लाते हैं, सुनवाते हैं इनके गाने का। लो ये मुर्गा बोलने लगा, मुर्गी कहाँ है।

0: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे लिखती है आमना खान जी, चिंग गट सॉन्ग, अच्छा। और ओके, और यहाँ पे रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे अच्छा लग रहा है। और क्या नाम है, बाबूलाल अंजाना जी लिखते हैं कि गोविंदा खंडाते जी की डिमांड शानदार लगी है, सुनते हैं ये गाना।
2: पतली कमर काले बाल हैरी मेरी उम्र 16 साल, फिल्म का नाम लोहा, अमन सर जी ये सॉन्ग सुनना है,
1: राहुल पासी जी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और निशांत है बोल के, गाना बहुत ही बढ़िया था, अच्छा मजा गया ना। ओके जी, और गोविंदा खन्ना सर जी ने गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमन सर जी। और ये क्या कहते हैं
1: आरजे अमन सर जी, राहुल पासी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी, और नेटवर्क शुरू हो रहा इस समय। और यहाँ पे विष्णु जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत ही पसंद है।

0: अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये पतली कमर लमे बाल वाला गाना मस्त लगा है जी, बिल्कुल। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना भी काफी अच्छा लगा है। और माय गॉड, नेट स्लो हो चुका है। और यहाँ परिषिता जी बहुत चलाक है, जैसे मैं कोई गाने का नाम लेता हूँ वो गाने की डिमांड कर देती है। और गजानन जी लिखते हैं कि ये पत्ती कमर लमे बाल गाना बहुत अच्छा लगा है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। दत्ता जी लिखते हैं गोविंदा खंडाडा जी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और काजल झका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और कृपा भी लिखते हैं कि हेलो अमन जी, हम भी जुड़ गए हैं जी, वेलकम करते हैं आपका भी। अगला गाना प्ले करते हैं ऋषिता जी का, जो आज के थीम पर अचानक से शामिल हो रहा है।
1: घुमर चिकर डाका चिकर घुमर चिकर डाका चिकर घुमर चिकर डाका चिकर।

0: कर जादू।
1: वेलकम है कौन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और कपूर चाची लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। और रणवीर सिंह जिनाला लिखते हैं कि ये तेरी पतली कमर में है जादू, अच्छा लगा गाना सुनकर। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि तेरी पतली कमर में है जादू, गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किशन पाजी लिखते हैं कि शानदार सॉन्ग चल रहे हैं सभी के सभी। और काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है। और यहाँ पे ऋषिका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि ये तिरछी नजर में है जादू वाला गाना मुझे अच्छा लगा। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये तेरी पतली कमर में जादू वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड ये ऋषिका जी की, थैंक यू सो मच। और इसके बाद पर अगला जो डिमांड।
2: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ मीना इब्राहिम जी का यूएसए। सुनना चाहती हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना वाला। बहुत सारे गाने जो अभी तक डाउनलोड नहीं हुए हैं वो लगे हुए हैं, नेट सोलो काम कर रहा है, मैं क्या करूं यार। फिलहाल जितने गाने मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं गाना प्ले कर पाऊंगा क्योंकि अब इधर उधर से गाने प्ले करना पड़ेगा जो गाने डाउनलोड हो पाए हैं। निशांत है बोलने जी लिखते हैं कि गाना भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि जादू वाला गाना भी मुझे अच्छा लगा है। और एमडी रोजित खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं एमडी रोजित खान जी। और लिखते हैं गुड इवनिंग सभी दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका भी। मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये काले लिबास में वाला गाना मुझे अच्छा लगा। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से, ये भी गाना काफ़ी अच्छा है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये मीना इब्राहिम जी की डिमांड बहुत ही शानदार है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। ओके जी। और कुंता बहन लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मीना इब्राहिम जी इतना ब्यूटीफुल डिमांड के लिए। साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी नमस्कार, आज का प्रोग्राम शानदार हो रहा है, आपकी प्रस्तुति भी लाजवाब चल रही है और सभी गाने अच्छे अच्छे सुनने को मिल रहे हैं। ओके जी। अगर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, किन का मैं प्ले कर दूँ फिलहाल, यानी कि कपूर चंद जी का प्ले करता हूँ।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हरे जो दीवाना वाला राहुल पास की रहते कि बहुत ही अच्छा गाना लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये भी गाना जी बिल्कुल जैसे यानी कि चेहरा वाला आता है गाना तो मैं आपका गाना लगाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि गाना भी बहुत प्यारा लगता है, मैं तो यानी चेहरा बहाला ही यानी चल रहा था, बीच में एक ऐसा गाना प्ले हुआ कि वहाँ से सारा मतलब सब कुछ यानी कि अलग अलग हो गया। फिलहाल अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो नीना जी की, और नीना जी ओ माय गॉड मुझे सुन रही हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज आपने इन पहली बार मुझे गाना डेडिकेट मतलब यानी डिमांड किया है, उसके लिए तो भाई मैं जरूर प्ले करने वाला हूँ, इंजॉय कीजिए इस गाने को। अरे ओ रे ओ रे अरे ओ रे ओ रे अरे

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दो मेरे पास बहुत सारे छुट्टिया गए हुए हैं। कपूर चंद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और काजल जगह जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सभी अच्छे अच्छे गाने की डिमांड करने के लिए। मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका मीना कुमारी जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि फैंटेस्टिक डिमांड है, और रणवीर सिंह जेठला लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे अच्छा लगा है, और कभी कभी रुक जाता है मैं से, तो मैं क्या करूँ, मुझे भी रुकना पड़ जाता है। हाँ, गजानंद जी लिखते हैं कि ये काले काले बाल गोरे गोरे गाने वाला मुझे अच्छा लगा गाना। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन जी, जब गाने बजते हैं और आप झूमते हो और गाना गाते हो, तो मुझे लगता है कि आप एक ही बात अंदर से गुनगुनाते होंगे कि मेरा एक दिल है किसको दूं, किसको दूं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैंने एक ही दिल था, वो मैंने किसी को दे दिया है। ओके, और इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गोरे गोरे गाल किसके लिए है, गाना मुझे अच्छा लगा। ओके जी, और रवि महाराज जी लिखते हैं कि ये काले काले बाल वाला गाना भी मुझे अच्छा लगा है। धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। ओके, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे शाहिद अंसारी जी का है। शाहिद अंसारी जी, एंजॉय कीजिए।

और शाहिद जी सच में गाना बहुत ही प्यारा था और आज बनते हैं आज एक बार फिर से सॉन्ग विनर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आजाद अंसारी जी लिखते हैं कि मैं आजाद अंसारी अपने गांव यानी कि ग्राम सुखदेव पट्टी से सऊदी अरब वाले। जी जी मैं आपको पहचान गया, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शाहिद जी की पसंद बहुत ही लाजवाब, बहुत बेहतरीन लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये अमन सर जी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो किन का करने वाला हूँ मैं जी देख लू जरा सा। ये तो हो चुका है, हम अपने नंदलाल यादव जी का गाना प्ले करते हैं। नंदलाल जी एंजॉय कीजिए।

0: और बहुत मुश्किल से बहुत से
1: के साथ बदलते हैं
0: ओके फिलहाल फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और यहाँ पे गजन अंजलि सिंह के नंदलाल जी के पसंद का गाना बहुत बेहतरीन लाजवाब है जी बिल्कुल सही कहा आपने। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि हमेशा जी बहुत खूबसूरत गाना है, धन्यवाद देते इस गाने के लिए भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद लाजवाब लाजवाब लाजवाब। अजात अंसारी जी लिखते हैं कि बहुत रात हो गया है, घर चले जाइए। अच्छा तो अभी मैं एक घंटे बाद जाने वाला हूँ 10:30 बजे, बिल्कुल मैं आज 10:30 बजे बंद करने वाला हूँ। बाबूलाल जी लिखते हैं कि नंदलाल जी की डिमांड बहुत ही प्यारा लगा है। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद। और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अमन जी का मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मुझे लगता है नंदलाल जी आपको फिल्म मिनिस्टर का गाना सब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा डिमांड करते हैं। काजल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है। राहुल पासी लिखते हैं कि बंद वाला ये गाना मुझे अच्छा लग रहा है। और कुंता जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है। ओके जी, इसी बात अगला जो डिमांड है ये प्रमोद कुमार जी का है। प्रमोद कुमार जी सुनाते हैं, हम आपकी पसंद का ये गाना एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना वाले विष्णु जी लिखते हैं कि जी मुझे तो ऐसा भी लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि भाई प्रमोद जी के पसंद बहुत ही खूबसूरत है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त प्रमोद कुमार जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी। सुरेश कुमार और सॉरी यानी कि सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में लाजवाब गाना सुनने को मिला है। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि उसने हाथों से छू कर दरिया के पानी को गुलाबी कर दिया। हमारी बात तो और थी, उसने मछलियों को भी शराबी कर दिया। मैं खाने बंद कर दे तो चाहे लाख दुनिया वाले, लेकिन शहर में कम नहीं है निगाहों से पिलाने वाले। अच्छा इसका मतलब आप प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ संदीप सुतार जी का। संदीप सुतार जी इंजॉय कीजिए।

मैं कखा भी लिखूंगा, एबीसीडी भी लिखूंगा, सब कुछ। और रणवीर सिंह जैसा लिखते हैं कि यही गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड है। अगला जो डिमांड है वो निक्की खान जी का है। निक्की खान जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

बिल्कुल ये गाना यानी विनर बनने के लायक है। बहुत बहुत आपको भी बधाई हो आज के विनर बनने के लिए। आमना खान जी और गजानंद जी लिखते हैं कि ये संदीप सुशांत जी गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, उनको धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये भी गाना काफी अच्छा है। और असलमान लिखते हैं कि अमन सर जी जो संदीप सुशांत जी का जो गाना था ना यानी कि तेरे गाले पर ही वो लगाना ABCD यानी लिखूंगा या यानी कि पढ़ूंगा ये गीत हकीकत है। ये अच्छा गीत आपके लिए है क्योंकि आप यानी टीचर है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि आमना खान जी गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और मीना कुमारी लिखते हैं कि ये समंदर बहा देने का जिगर तो रखते हैं लेकिन हमें आशिकी का नुमाइश की आदत नहीं है। मेरे बारे में अपनी सोच को थोड़ा बदल के देख, मुझसे भी ये लिखी बुरे लोग हैं जो तू घर से निकल के देख। अच्छा कोई बात नहीं फिलहाल। और आमना खान लिखते हैं कि थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। इसी बात का जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ किन का, जरा देख लेता हूँ। ये है हमारे यानी कि गजानंद सुलकार जी का ग्रुप और क्या नाम है इनका यानी कि किशन पाल शाकिया जी। तो इन सब की जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ मुखड़ा चांद का टुकड़ा। बिल्कुल नैन शराब के प्याले, एंजॉय कीजिए गाने को मुखड़ा चांद का टुकड़ा।

मुखड़ा चांद का टुकड़ा, और इन प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग मुखड़ा चांद का टुकड़ा। ओके जी, और यहाँ पे एमडी रोजुद्दीन जी लिखते हैं कि रोजित खान जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है सर जी। और पमल कुमार लिखते हैं रेस्पेक्टेड गार्ड जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि मुखड़ा चांद का टुकड़ा गाना भी मुझे अच्छा लगा है। और शिल्पा भी लिखते हैं कि ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल लाजवाब है। और काजल झका जी लिखते हैं ये भी गाना बहुत ही प्यारा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मुखड़ा चांद का टुकड़ा गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को प्यार नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि मुखड़ा चांद का टुकड़ा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मीना कुमार जी लिखते हैं कि ओके। और आत्माराम जी लिखते हैं कि ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा गाना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। ओके, और फिलहाल कुंता जी लिखते हैं कि गजानंद सरकार जी के ग्रुप की डिमांड मुझे बहुत ही पसंद है। इसके बाद अगला जो डिमांड है अभिषेक तिवारी जी का है, सुनना चाहते हैं चेहरा तेरा किताबी किताबी सुनवा दे।

बिल्कुल चेहरा तेरा किताबी किताबी, सच में बहुत ही प्यारा चेहरा है और जितने तारीफ करे कम है, मतलब सुंदरता की मूरत हो तुम। और वैसे फिर एक मेरे पास आए रवि मोहाड़ी जी, लिखते हैं कि मुखड़ा चरण का टुकड़ा, ये गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि अभिषेक तिवारी जी का भी गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, चेहरा तेरा किताबी किताबी। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि चेहरा तेरा किताबी किताबी, ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। गजानंद जी लिखते हैं कि हमारे गीत को पसंद करने वाले दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि चेहरा तेरा किताबी किताबी गाना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अर्जा मंजिल नमस्कार, और हमारे पसंद का गाना चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल अगला जो डिमांड है दत्ता कदम जी का है और ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरी सुनदत्ता की मूरत जी के लिए डेडिकेटेड भी है, तो सुनवाता हूँ इस गाने को।

बिल्कुल दत्ता करम जी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि कितना प्यारा है चेहरा जिस पे हम मरते हैं। दत्ता जी के पसंद बहुत ही शानदार। राहुल पासी जी लिखते हैं कि दत्ता जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है रंजीत कुमार जी का है, सुनना चाहते हैं ये भी कितना मतलब कितना प्यारा चेहरा है। इंजॉय कीजिए।

बहुत प्यारा, बहुत, जितनी तारीफ करें कमी है। यूं समझे मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है।

0: बिल्कुल, तू मेरी सजनी है, बहुत प्यारा है और चेहरा भी है। ओके, और फिलहाल फीडबैक भी है मेरे पास है। निकला जी क्या कहते हैं, दिल मैक से सुनते हैं।
1: Good evening, Mr. R.J. Aman.
0: Good evening, sir.
1: How are you this evening, my
0: dear? I am very fine, sir. What about you?
1: Strong and wonderful program.
0: Thank you so much, sir.
1: Take care. God bless you.
0: Welcome, sir, जी. And Ranveer Singh जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि रंजीत कुमार जी की पसंद मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और अरुण मनोज जी लिखते हैं कि रंजीत जी की पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और आत्मराम जी लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम पे करने का जो यानी तरीका है ना, वो मुझे निराला लगता है। ओह, थैंक यू सो मच। फिलहाल यहाँ शिल्पा बहन लिखते हैं कि कितना प्यारा है ये चेहरा, ये मेरी सजनी है, बहुत ही प्यारा गाना है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ किनका, वो है मैं बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है, हमारे रणवीर सिंह जेठालाल जी की है और सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना। और ये एक काम कीजिए, पहले सुनिए फिर मैं बताता हूँ। वो है कितना हसीन चेहरा, बिल्कुल हमारी सुंदरता की मुरत जी की तारीफ में है ये गाना।

जुल्फे यानी खुले हुए बाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और सच में बहुत ही प्यारे लगते हैं। वैसे मेरे पास फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। ओके जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि रणवीर सिंह जेठाला जी के पसंद दिलवाले का गाना मुझे अच्छा लगा है। कुंता जी लिखते हैं कि सभी डिमांड एक से बढ़कर एक चल रहे हैं और आज की थीम बहुत ही प्यारी है। थैंक यू सो मच आप सभी को, दिल से शुक्रिया इतना अच्छे से गाने की डिमांड करने के लिए और प्रोग्राम को स्वस्थ बनाने के लिए। काजल झका जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है और मीना जी लिखते हैं कि ये बेवफा में वफा तलाश करते हैं हम और इन कितने नादान हैं कि उसके लौट आने की उम्मीद करते हैं हम। वाह क्या बात है। इसी बात का अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो इन विष्णु चंद्र जी का है। सुना चाहते हैं भोली सी सूरत, बिल्कुल इंजॉय कीजिए इस गाने को। अगर आप यानी कि सोचेंगे ना कि सुंदरता की मूरत जी कौन है तो बिल्कुल आप मेरी नजर से देखिए, वो आपको दिखेंगे जरूर।

बिल्कुल भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए मुस्काए आए हाय। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत पसंद आया है। और अमजद महमूद जी लिखते हैं कि अमन जी अच्छा गा रहे हैं भोली सी सूरत, अच्छा थैंक यू सो मच सर जी। काजल झका जी लिखते हैं कि ये गाने के लिए थैंक यू सो मच। और अगला जो डिमांड है वो इन पूजा भास्कर जी का है, इन चेहरा तेरा जब जब देखो प्यार आए, बिल्कुल

बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आ रहे हैं और राहुल पासी जी लिखते कि बोली से सूरत वाला गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है, और शिल्पा पे लिखते कि दिल तो पागल है गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, और अंजल खान जी लिखते हैं कि अमजद महमूद जी लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी गाना मुझे पसंद आया, काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि चेहरा तेरा जब जब देखूँ गाना बहुत ही प्यारा है, गजानंद जी लिखते हैं कि चेहरा तेरा जब जब देखूँ बहुत ही सुंदर गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। अगला गाना जो है अनिल मेहता जी का है, सुनना चाहते हैं ये तेरी आंखें झुकी झुकी, बिल्कुल इंजॉय कीजिए।

फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, फीडबैक तो बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन आमना खान जी जो आज की विनर बनी है, पहले इनका गाना प्ले करता हूँ, फिर आज के विनर को कॉल लगाता हूँ मैं। चले।

0: कभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही 100 काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है?
0: सवाल पूछे बिना तुझसे कोई काम होगा?
1: ओके, चल ठीक है, प्लीज।

अभी यानी कि फर्स्ट थे रणवीर जी और इनका लॉटरी में भी फर्स्ट ही में नाम आया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं इनको कॉल लगाने वाला हूँ और एक गाने के बाद यानी कृष्ण बैंड के गाने के बाद मैं इनको कॉल लगाने वाला हूँ। तो अपडेट कर लीजिएगा ऐप अगर अपडेट नहीं किए हों तो। और यहाँ पे कुंता बहन जी लिखती है कि बहुत ही प्यारी डिमांड है जी, बिल्कुल मजा आ गया ना, झुमा दिया एकदम इन्होंने। राजा झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और यानी कि पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग भी बहुत ही बढ़िया है जी, बिल्कुल। और यहाँ पे रवि महाराज जी लिखते हैं कि ये तेरी आंखें झुकी झुकी वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा, और अलीशा चिना का गाना भी चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और अमजद महमूद जी लिखते हैं कि विनर को बहुत बहुत मुबारक हो। रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे अच्छा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आमना खान जी की पसंद बहुत ही बेहतरीन लगी है, ओके जी। और मीना जी लिखते हैं कि सितारों को भेजा है आपको सुलाने के लिए, और चांद आया है आपको लोरी सुनाने के लिए, और सो जाओ मीठे ख्वाब में आप, और सुबह सूरज को भेजेंगे आपको जगाने के लिए। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि आपने मेरा गाना प्ले किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और नव्या जी गोंडा से जुड़ चुकी हैं, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और यह ये डांस कर रही हैं, यहाँ पे लिखे हैं नाइस सॉन्ग, ओके थैंक यू सो मच नव्या जी आपका। और प्रमुख जी लिखते हैं कि हेलो सर जी, गुड इवनिंग वंस अगेन, माय नेम इज इन प्रमुख कुमार एंड आई एम लिसनिंग टू यू फ्रॉम लुधियाना पंजाब, आई एम ए न्यू लिसनर, द प्रोग्राम इज गोइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच भाई प्रमुख जी। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है जी कुमार, एंड आई एम लिसनिंग टू यू फ्रॉम लुधियाना पंजाब, आई एम ए न्यू लिसनर, द प्रोग्राम इज गोइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच भाई प्रमुख जी। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना है जी। फिलहाल यहाँ शिल्पा बेन का गाना प्ले करता हूँ, फिर मैं आता हूँ तो कॉल लगाता हूँ।

बहुत से दोस्तों के डिमांड छूटने वाले हैं, जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, जैसे हुकुमचंद जांगर जी, गोपाल इन पड़ीदार जी, रवि मुहाड़े जी, रुबीना नाथ जी, और यानी कि यहाँ पे सीमा भले जी, और निशांत राय भोले जी, और रवि लोधी जी मध्य प्रदेश, और कुंता बेनी जी, और सुनील क्या नाम है इनका, सुनील चौहान जी, ओके, और दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, आर के रवि जी हैं, राजेश कुमार जी हबीबपुर ग्रेटर नोएडा से हैं।

वेलकम बैक और कॉल लगा देते हैं, लेकिन फीडबैक पहले है, फीडबैक शामिल करते हैं। निकला जी क्या कहते हैं? इनका ऑडियो नहीं है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और आमना खान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, और निशांत है बोले जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, सच में कहा। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि तेरे मेरे होठों पे गीत मितवा अच्छा गाना लगा है मुझे। प्रमुख जी लिखते हैं कि तेरे मेरे होठों पे गीत मितवाला मुझे वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिला, थैंक यू फॉर द सॉन्ग। एंड लिखते हैं कि दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, ओके जी। और मीना जी लिखती हैं कि ये रात में जुगनू की जगमगाहट, आसमान में तारों की झिलमिलाहट और ठंडी वादियों में हवाओं की सरसराहट, इन सबसे खूबसूरत है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। वाह वाह वाह वाह। और फिलहाल कॉल लगाते हैं रणवीर सिंह जेठालाल जी को। हेलो,

0: इन्होंने अपना एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया हुआ है, इसीलिए इनका कॉल नहीं लगा। कोई बात नहीं है, आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी ज़्यादा फरमाइश जी, मतलब फरमाइश तो बहुत ज़्यादा है, सभी की छूट रही है, फिलहाल ये फीडबैक शामिल करता हूँ।
1: बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सॉन्ग, मेरे लिए तो प्रोग्राम का सबसे सुपरहिट सॉन्ग यही है सर जी। अच्छा। बहुत दिनों से नहीं सुना था, मजा आ गया गाना सुन के।

0: पीछे पीछे मीत मीत हुआ। बहुत ही लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया।
1: ओके धन्यवाद देते हैं। और एक दो गाने में अपने सुंदरता की मुरत जी के लिए मैं इन प्ले करके जा रहा हूँ, आप सबके लिए एंजॉय कीजिए। और कुंता जी लिखते हैं कि लाजवाब सुपर ट्रुपर हिट सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। तो दो गाने हैं, एक भोजपुरी है और एक हिंदी है, थोड़ा थोड़ा दोनों को मैं प्ले करूंगा। लेकिन सबसे पहला ये ऐसन चेहरा नाही बनैले होइयन भगवान, मतलब बहुत ही प्यारा गाना है, एंजॉय कीजिए।

तो इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर। हाँ, 6 बजे मैं कहता हूँ जरूर, कभी कभी 6:30 बज जाता है, बिल्कुल इसमें मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, इसके लिए सॉरी। फिलहाल अगले यानी कि आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं, बाय बाय।

नहीं नहीं नहीं नहीं बताऊंगी तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं।

0: लज्जा। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई

दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

मचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे।

किस्मत जागी,

जिंदगी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी पे